ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। जापानी वजीर खारजा मोतेगी तोशिमित्सु ने इस जरूरत पर जोर दिया है कि पूरी आलमी बरादरी आपनाए हुर्मुज के मुस्तकबिल पर बात करे। उन्होंने न्यूयॉर्क में वज़राए खारजा के एक इजलास में महफूज और मुस्तहकम बहरी दायरेकार के हुसूल के लिए बहरी तआवुन को तकवीत देना के मौजू पर बात की। जापान, फिलिपाइन और दीगर के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस इजलास में 53 ममालिक और तंजीमों ने शिरकत की। मोतेगी ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए आपनाए हुर्मुज़ के ज़रिए आज़ादाना और महफूज जहाज़रानी की बहाली की अहमियत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि इस कलीदी आबी गुजरगाह पर मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी है कि आपनाए पर मौजूद ममालिक और इसे तरसील के लिए इस्तेमाल करने वालों समेत पूरी बैन अल-अक़वामी बिरादरी इनमें शामिल हो। उन्होंने बकौल उनके बुहरे मशरक़ी चीन और बुहरे जनूबी चीन में बज़ोर ताकत या जबर मौजूदा हैसियत को तब्दील करने की मुसलसल और शिद्दत पकड़ती यकतरफा कोशिशों के बारे में चीन की मुखालफत का भी इरादा किया। मोतेगी बज़ाहिर चीन को जहन में रखते हुए ये तबसरा कर रहे थे। उन्होंने बुहरे जनूबी चीन में चीन के इलाकाई दावों को मुस्तरद करने वाले बैन अल-अक़वामी सालिसी ट्रिब्यूनल के 2016 के फैसले पर अमल पैरा ममालिक की अहमियत को उजागर किया। कंबोडिया की हुकूमत ने मीडिया को धोखा दही के अड्डे और तफ्तीशकारों की जानिब से वहां से जब्त की गई अशिया दिखाई हैं। एक अड्डा जो वियतनाम के साथ सरहद के करीब है, तकरीबन 1.2 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। ये एक ऐसे मुकम्मल कस्बे की मानिंद दिखाई देता है जिसमें रेस्तरां तक मौजूद हैं। अड्डे के अंदर मेजों पर कंप्यूटर मॉनिटर रखे थे। एक हिस्से पर सिंगापुर पुलिस का लेबल लगा था। कंबोडियन हुकाम ने कहा कि बावर किया जाता है कि एक जराइम पेशा ग्रोह ने इस पुलिस फोर्स का रूप धार कर धोखा दही अंजाम दी है। मकामी हुकाम और दीगर ओहदेदारों का कहना है कि यह अड्डा कंबोडियन कारपोरेट ग्रुप प्रिंस होल्डिंग ग्रुप के तहत चलाया जा रहा था, जो एशिया की सबसे बड़ी बैन अल-अक़वामी जराइम पेशा तंजीमों में से एक के तौर पर अमरीकी हुकाम की जानिब से पाबंदियों की जद में है। उनका कहना है कि चीनी, वियतनामी और भारतीय शहरियों समेत 20,000 तक गैर मुल्की वहां मुकीम थे। दरियासना मुल्क में फ्राड के अड्डों से जब्त किए गए स्मार्टफोन और कंप्यूटरों समेत शवाहिद की कई अशिया दारुलहुकूमत फिनाम पेन के एक पुलिस स्टेशन में नुमाइश के लिए रखी गई। इनमें जापानी पुलिस की जाली वर्दियां और नोटबुक्स शामिल थीं, साथ ही जापानी जबान में लिखे गए नोट्स जिनमें उन जापानी लोगों के नाम, पते और दीगर मालूमात शामिल थीं जिनके बारे में बावर किया जाता है कि उन्हें जराइम पेशा ग्रोहों ने निशाना बनाया था। पुलिस को ऐसा एआई सॉफ्टवेयर भी मिला जो चेहरे की तस्वीर को तब्दील कर सकता है। इससे ये जाहिर होता है कि धोखा दही के तरीके कितने पेचीदा हो चुके हैं। जापानी येन का बुध के रोज न्यूयॉर्क में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 158 की निचली सतह पर लेन देन हुआ। ये 3 हफ्तों में कमजोर तरीन है। जुमेरात को टोक्यो में येन के भाव इसी सतह के इर्द गिर्द चल रहे हैं। अमरीकी कारोबारी सरगर्मी इंडेक्स के आदाद व शुमार तवक्को से कई ज्यादा मजबूत आने के बाद येन को फरोख के दबाव का सामना करना पड़ा। इसने इन तवक्कोआत को बढ़ाया कि फेडरल रिजर्व मईशत मजबूत होने के बायस इस साल दोबारा शरह सूद बढ़ा सकता है। इसके नतीजे में इन उम्मीदों पर ऊस पड़ गई है कि अमरीका और जापान के दरमियान शरह सूद का फर्क जल्द ही खत्म हो जाएगा। मंडी जराय का कहना है कि येन की गिरावट ने जापानी हुकूमत और बैंक ऑफ जापान की जानिब से मार्किट मुदाखलत के बारे में खदशात को दोबारा ताज़ा कर दिया है। और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। चीनी सदर शी जिनपिंग अमरीका के सरकारी दौरे पर हैं। मई में ट्रंप के बीजिंग के दौरे के बाद ये रवा साल में उनकी सदर ट्रंप से दूसरी सरबराह मुलाकात होगी। और अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमरीका और चीन ने अपनी तिजारती जंगबंदी में 2 माह की तोसी पर इत्तेफाक किया है, जो 10 नवंबर को खत्म होने वाली थी।
اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nhk.jp/اردو۔